दक्षिण प्रयास प्रोडक्ट्स आर वेल रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट मेनी कंट्रीज अब्रॉड एंड वी हैव नाउ गॉट ग्रांट एंड वी हैव बिल्ट अ सेल्फ रिलायंस सेंटर. देर इज अ दक्षिण प्रयास सेवा निधि हैज़ बीन फाउंड वेयर बाई आई थिंक टुडे 50 और 60 वेमेन आर वर्किंग. दे आर मेकिंग रीजनेबली गुड इनकम फॉर देयर फैमिलीज एंड द सरप्लस वुड गो बैक इन टू द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो दिस मॉडल सीम्स टू बी वर्किंग वेल एंड वी आर विथ टाइम वी आर बिकमिंग ऑल्सो एम्बिशस दैट वी आर होपिंग दैट बाई 2030 वी कैन मेक दक्षिण प्रयास एज ए टोटली सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल फॉर ए कम्युनिटी डेवलपमेंट. यू नो वेयर बाई कम्युनिटी वुड अर्न मेक अ डिसेंट लिविंग एंड वुड ऑल्सो सपोर्ट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन एंड यंगस्टर्स ऑफ द कम्युनिटी. सो इन अ सटल वे देर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन यू नो थ्रू द पेरेंट टीचर मीटिंग्स एंड ऑल दैट. एंड ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो सेंसिटाइजिंग अवर चिल्ड्रेन एंड अवर टीम इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स सो दैट दिस कम्युनिटी दीज चिल्ड्रेन बिकम ए काइंड ऑफ ए रोल मॉडल फॉर द अदर मार्जिलाइज कम्युनिटी दैट दे कैन स्टिल लीड ए वेल इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल लाइफ यू नो.